बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

जी हाँ, आप इस कार्यक्रम के दीवाने हैं ये तो हमें बखूबी पता है, और इसीलिए तो ठीक स्टूडियो की घड़ी में जब वक्त हो रहा होता है 10:02 और सीधे ही हम पहुंच जाते हैं स्टूडियो आपके लिए, लेकर आते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम होता है नॉनस्टॉप गपशप, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह से इसी चैनल के जरिए। तो चैनल है 107 FM रेनबो, और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे इस प्रसारण को आप सुन पा रहे हैं। तो बात हो रही थी पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ढेरों बातें होती हैं अलग अलग विषयों को लेकर। इसके अलावा गीत संगीत का जो सिलसिला है वो भी चलता रहता है इसी कार्यक्रम में। तो चलिए फिर एक बार शर्मिशा लेकर हाजिर हो चुकी है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। जी हाँ, गपशप होंगी ढेरों अलग अलग विषयों को लेकर, बातें होंगी आज के इस कार्यक्रम में, आज के खास दिन को लेकर भी बात करूंगी। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा आज की स्पेशल बर्थडे वाले दिन को लेकर भी बताऊंगी आपको इसी कार्यक्रम में, और बताऊंगी कि बॉलीवुड की दुनिया में आखिर कौन मना रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो सारी बातें अभी अभी कर लूं क्या? नहीं ना। तो चलिए सुनवाऊं आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना, और उसके बाद तो होती ही रहेंगी ढेरों गपशप, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है नॉनस्टॉप गपशप।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:22 बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। 107 एफएम रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है और सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा को, और कार्यक्रम चल रहा है, जी हाँ, वही वाला जिसे आप हर रोज इसी समय सुनते हैं, यानी कि जिसमें लगातार गपशप तो होती रहती है लेकिन साथ ही साथ मनोरंजन के लिए बातों के साथ साथ एक से बढ़कर एक गीतों का तराना भी रहता है आप सभी सुनने वालों के लिए। तो चलिए अब गपशप करते हुए बात करूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, जी हाँ, जिन्होंने आपके दांतों की रक्षा करने के बारे में सोचा है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ आपके वही पसंदीदा डेंटिस्ट के बारे में। अच्छा, ज़रा ये तो बताइए कि क्या आप अपने डेंटिस्ट से प्यार करते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके उन्हीं डॉक्टर डेंटिस्ट के बारे में जिन्होंने आपके दांतों की देखभाल के बारे में सोचा। जी हाँ, आपके दांत किस तरीके से ठीक ठाक रहेंगे, दांतों को ठीक ठाक रखने के लिए आखिर आपने क्या क्या करना है, नहीं करना है, ये सारी बातें जो हैं वो आपके डेंटिस्ट आपको बताते हैं। तो वही डेंटिस्ट की मैं बात कर रही हूँ आज की सुबह इस कार्यक्रम में, कि क्या आप अपने डेंटिस्ट को थैंक यू कहना चाहते हैं, और ये थैंक यू किस लिए? ये थैंक यू इसलिए कि आपके जो डेंटिस्ट हैं वे आपकी दांतों की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समय समय पर आपको बताते रहते हैं। अगर हाँ, तो आज वही मौका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही।

मौका है कि जब आप अपने डेंटिस्ट को शुक्रिया अदा कर सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं आपके दांतों की रक्षा करने और करवाने के लिए, एक बहुत बड़ा धन्यवाद आप जता सकते हैं। और अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई आज के इस कार्यक्रम में भला डेंटिस्ट की बात क्यों आ रही है, तो बताऊंगी ये भी कि डेंटिस्ट की बात आखिर क्यों आ रही है और ख़ासकर उन्हें आज के दिन धन्यवाद आखिर क्यों देना है। बातें होंगी ये सारी, लेकिन फ़िलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, और उसके बाद बताऊंगी कि आज हमारे चहेते, हम सभी के चहेते जो हमारे डेंटिस्ट हैं, उन्हें शुक्रिया अदा, थैंक यू, धन्यवाद आखिर क्यों कहना है। लेकिन फ़िलहाल आतिफ असलम और चिन्मय की आवाज़ में ये प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 31 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और फिर एक बार शर्मिशा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है। कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप और आज के इस कार्यक्रम में मैं बात कर रही थी आपके अपने पसंदीदा डेंटिस्ट को थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद कहने की। और आपके दिमाग में ये सवाल तो घूम ही रहा है कि आखिर डेंटिस्ट के बारे में आज के दिन क्यों बात हो रही है। तो भाई आज का जो दिन है वो है डेडिकेटेड डेंटिस्ट के नाम। जी हाँ, और इसीलिए तो आज ही के दिन डेंटिस्ट को धन्यवाद देने का सबसे अच्छा मौका है। जी हाँ, वही इंसान जिन्होंने आपके दांतों की सुंदरता के बारे में सोचा और आपको बताया कि किस तरीके से आपके दांतों की देखभाल आपने करनी है। इसके अलावा दांतों से परेशान अगर आप होते हैं तो सबसे पहले हमें जो है याद आखिर किसकी आती है। जी हाँ, किसी और की नहीं बल्कि एक ही इंसान है जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो है हमारे प्रिय डेंटिस्ट, जिसके पास जाने के लिए हम थोड़ा भी वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। जब हमारी जो दांतें हैं, हमारे जो दांत हैं वो हमें दर्द से परेशान कर रहे होते हैं, तो चलिए आज के दिन उन्हीं प्यारे चहीते डेंटिस्ट को करें शुक्रिया, धन्यवाद उनका करें, क्योंकि आई लव माई डेंटिस्ट डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और हर साल 2 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है ये दिन, और ये दिन मरीजों के लिए एक विशेष अवसर है कि वे अपने दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने दंत चिकित्सकों के प्रति आभार और प्रेम व्यक्त करें। इसके अलावा भाई ये तो थी बात कि डेंटिस्ट के नाम आखिर क्यों डेडिकेटेड है आज का दिन, तो क्यों मनाया जाता है इस दिन को, इसके बारे में तो खैर मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा क्यों मनाया जाता है इसका जो जवाब है ये इस तरीके से दिया

की याद हमें तो तभी आती है जब हमारे ये जो सुंदर सुंदर दांत है ये हमें पीड़ा देते हों और काफ़ी दर्द से हम परेशान हो रहे हों, तभी डेंटिस्ट की याद हमें आती है। तो अक्सर हम डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, हम डरते हैं उनके पास जाने से। ये दिन उन दंत चिकित्सकों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए है जो हमारे मौखिक स्वास्थ्य यानी कि ओरल हेल्थ को दुरुस्त रखते हैं और हमें आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देते हैं। इसके अलावा जागरूकता फैलाने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। ये दिन लोगों को अपने ओरल हाइजीन यानी कि दांतों की सफाई की देखभाल करने और नियमित जांच यानी कि रेगुलर चेकअप्स के महत्व की याद भी दिलाता है। और अगर आप इस दिन को मनाना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, क्या कर सकते हैं आप आज के दिन को मनाने के लिए? और जैसे कि मैं शुरुआत में कह रही थी कि आज के दिन आप अपने डेंटिस्ट को कॉल करके, जी हाँ, एक छोटा सा फोन कॉल काफ़ी है अपने डेंटिस्ट को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करने के लिए। तो डेंटिस्ट को धन्यवाद आप दे सकते हैं आज के दिन। आप अपने डेंटिस्ट को कॉल कर सकते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर थैंक्स संदेश के ज़रिए धन्यवाद दे सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं। इसके अलावा ओरल हाइजीन का संकल्प भी आप ले सकते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से हो, इसीलिए क्या क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले तो सुबह को जब हम उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमारे दांतों को हम साफ करें, और इस तरीके से ओरल हाइजीन का ध्यान हमने खुद भी रखना है और हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को ओरल हाइजीन के बारे में बताना है और इसके फ़ायदे के बारे में भी हमें सब तक जानकारी पहुंचानी है। तो ये तो थी बातें आई लव माय डेंटिस्ट डे को मनाने की, क्योंकि आज का जो दिन है वो डेंटिस्ट के नाम डेडिकेटेड है। और चलिए हम सब मिलकर एक अच्छी सी मुस्कान हमें भेंट देने के लिए हमारे जो पीछे खड़े होते हैं यानी कि हमारे प्रिय जो डेंटिस्ट है उन्हें हम सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर एक छोटे से फ़ोन कॉल के ज़रिए हो एक धन्यवाद, एक शुक्रिया, एक थैंक यू तो कह ही सकते हैं, है ना? तो चलिए आप कहते रहिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं, मैं सुनवाती हूं आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना और उसके बाद बातें करेंगे किसी और विषय को लेकर, है ना? तो चलिए सुनवाऊं आपको ये गीत।

इस गीत को सुनने के बाद आपके मन की जो शंका है वो तो खैर दूर हो ही चुकी होगी, क्योंकि ये जो जाना माना गीत है इसे मेरे ख्याल से लोगों ने नहीं सुना होगा, ये तो शायद हो नहीं सकता है ना। तो चलिए, इसके बावजूद अगर आपने इस गीत को नहीं सुना है तो बता दूँ आपको, राउडी राठौड़ फिल्म से है ये गीत और साजिद वाजिद के संगीत से सज उठा था ये गीत और कुमार शानू श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को। तो बता रही थी हैप्पी वाले बर्थडे के बारे में। तो चलिए, बॉलीवुड की दुनिया में आज मना रही हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपना हैप्पी वाला बर्थडे और आकाशवाणी और सभी चहेते लोगों की ओर से ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की। तो आज के दिन यानी कि 2 जून 1987 में जन्म हुआ था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का, जिन्हें हम जानी मानी अभिनेत्री और गायिका के तौर पर जानते हैं। उन्होंने 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म दबंग से शानदार अभिनय की शुरुआत की थी। करियर और प्रमुख फिल्मों के बारे में अगर बात करें तो सोनाक्षी ने करियर की शुरुआत एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी। उन्हें अपनी पहली फिल्म दबंग के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा उनकी अभिनय की हुई हिट फिल्मों के बारे में अगर बात करें तो दबंग है, राउडी राठौड़ के अलावा, सन ऑफ सरदार के अलावा, लुटेरा, हॉलीडे के अलावा, हीरा मंडी जो कि एक वेब सीरीज थी, इन सारी फिल्मों में सोनाक्षी सिन्हा के बेहतरीन अभिनय को हम सब ने देखा है। और यूं ही लगातार एक के बाद एक कई सारी फिल्में हम सभी को तोहफा देकर उन्होंने अपने अभिनय का जादू जो है वो चला दिया है। तो चलिए सुनवाऊं आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

आपका जिया चोरी करने का जो सिलसिला है वो जारी है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। जी हाँ, अलग अलग गीतों के माध्यम से, बातों के माध्यम से आप सभी सुनने वालों का जिया जो है वो हमने चुरा लिया है आज के दिन। तो चलिए, इसी तरह से हर रोज आपसे बातें होती हैं अलग अलग विषयों को लेकर, और न जाने कितने ही तराने आप तक पहुंचाते हैं हम अलग अलग बातों के जरिए, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। तो चलिए, अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को करना होगा यहीं पर समाप्त। लेकिन जाने से पहले मोनाली ठाकुर की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना छोड़े जाना चाहूँगी इस कार्यक्रम का, जो कि अगला और आखिरी तराना होने वाला है। और जल्द ही मिलेंगे आपसे, समय रहेगा 11:10, और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड। तो चलिए, इस आखिरी तराने के साथ शर्मिष्ठा कहती है अलविदा फिलहाल के लिए, विदा लेती हूँ इस कार्यक्रम से।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हूं मनोरंजन, संगीत और मस्ती का शानदार संगम यानी कि कार्यक्रम तीन का तड़का सिर्फ ऐसे 107 FM रेनबो पर। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इस कार्यक्रम में हर बार मिलेगा तीन चीजों का बेहतरीन मेल यानी कि शानदार की दिलचस्प बातें और ढेर सारी यादें जो आपके दिन को बना देंगी और भी खुशनुमा। तो दोस्तों, अगले एक घंटे तक हम सुनेंगे बॉलीवुड के बेहतरीन गीत, जानेंगे उनसे जुड़ी रोचक बातें और करेंगे ढेर सारी गपशप। तो चाहे आप घर पर हो या ऑफिस में या फिर सफर में, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संगीत का ये तड़का आपके दिन में घोलने वाला है खुशी और उत्साह का नया रंग। तो तैयार हो जाइए क्योंकि शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल, या मैं ऐसा कहूँ कि दोस्तों कि शुरू हो चुका है बिल्कुल मनोरंजन का ऐसा सफर जहाँ हर गाने के बाद मिलेगा बातों का नया तड़का। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 3:14:20 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का भी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ उसी 107 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों गीतों का सिलसिला तो शुरू हो ही चुका है, तो चलिए बातों के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों जल्द ही राजकुमार हिरानी और आमिर खान की 3 Idiots के सिक्वल की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप देने के लिए फाइनल मीटिंग करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सिक्वल को लेकर आमिर और राजकुमार के बीच नियमित तौर पर बातचीत हो रही है और इस फिल्म को लेकर उनके बीच करीब 6 बैठकें हो चुकी है। अब जल्द ही दोनों के बीच 7वीं बैठक भी होगी, उसके बाद फिल्म पर आगे का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, देखते हैं कि 3 Idiots के सिक्वल में जी हाँ क्या देखने को नया मिलता है। फिलहाल आपके पास मेरे लिए बहुत सारे ढेर सारी बातों के साथ गीतें भी हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो

तो दोस्तों आप ये गीत सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज में फिल्म हिट स्टोरी 3 से। तो दोस्तों इस वक्त स्टोरी में समय हो चला है 3:26:55, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि अब लेना होगा एक छोटा सा अंतराल, यानी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस पर बिल्कुल दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है आपके और मेरे बीच शाम के ठीक 4 बजे तक। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम 3 का तड़का में, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

बिल्कुल दोस्तों, इस गीत को सुनने के बाद कहीं ना कहीं बेहद और उत्साहवर्धक और सकारात्मक गीत जो था तो सुनने के बाद कहीं ना कहीं गुस्सा तो आ ही हो गया। और ये गीत फिल्म के एक मुख्य पात्र यानी कि श्रीदेवी के आत्मविश्वास और आत्मखोज की यात्रा को दर्शाता है। और इस गीत को अमित त्रिवेदी ने संगीतबद्ध किया और इसे शिल्पा रॉय ने अपने मधुर आवाज दी। गीत के बोल बताते हैं कि नई भाषा सीखना केवल शब्द सीखना नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करना और जीवन में आगे बढ़ना भी है। बिल्कुल, फिल्म में ये गीत उस दौर को दर्शाता है जब शशि यानी कि श्रीदेवी अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रही होती है और धीरे धीरे वो अपनी झिझक और हीन भावना को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनती है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये गीत का संदेश है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर व्यक्ति में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें यह सिखाता है कि असली ताकत किसी भाषा में नहीं बल्कि अपने ऊपर विश्वास करने में होती है। और फिल्म का ये टाइटल ट्रैक यानी कि फिल्म इंग्लिश वेंग्लिश का ये टाइटल ट्रैक उसी आत्मविश्वास और नई शुरुआत का खूबसूरत प्रतीक है। तो दोस्तों, साथ ही ये भी बता दो कि स्टूडियो में समय हो चला है 3:41 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का भी दो ज्योति के साथ सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों, साथ ही ये भी बता दो कि बातों और गीतों का सिलसिला जो है चलने वाला है ठीक शाम के 4 बजे तक। तो दोस्तों, यूं ही आनंद लेते रहिए और चलिए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 3:52 और 10 सेकेंड यानी कि घड़ी की सुइयां बता रही कि कार्यक्रम जो है अपने समापन की ओर बढ़ चला है। बिल्कुल दोस्तों, तो दोस्तों इसी गीत के साथ आज का 3 के तड़के में बस इतना ही। उम्मीद है कि गीतों की ये शानदार पेशकश, उनसे जुड़ी बातें और संगीत की यह रंगीन महफिल आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर कोई गीत आपकी यादों को छू गया होगा, तो किसी धुन ने आपको गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया हो या किसी बात ने आपके चेहरे पर मुस्कान ला दी हो, तो हमारा प्रयास सफल हुआ। क्योंकि दोस्तों संगीत की यह खूबी है कि यह बिना कुछ कहे भी दिलों तक पहुंच जाता है, पुरानी यादों को ताजा कर देता है और नए सपनों को उड़ान दे देता है। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नए अंदाज, नए गीतों और नए तड़के के साथ। और दोस्तों साथ ही ये भी बता दो कि जाते जाते आप सभी के लिए प्यारा सा गीत छोड़े जाती हूँ, लेकिन मैं ठीक आप सभी से मिलने आऊंगी 5:20 पे, यहाँ नहीं, जी हाँ, चाय एंड क्लासिक्स लेकर 100.1 FM गोल्ड पर। तो दोस्तों तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, और हाँ तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लीजिए। तो दोस्तों आज थी मैं आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम 3 का तड़का। तो चलिए दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ, इस गीत के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। और हाँ आप कहीं मत जाइए, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए 107 FM रेनबो पर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो शब्दों से नहीं बल्कि दिल की धड़कनों से महसूस किया जाता है। कभी यह मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। और जब इस खूबसूरत एहसास को संगीत का साथ मिल जाए तो जन्म लेते हैं कुछ ऐसे ही गीत जो सीधे दिल को छू जाते हैं। इन्हीं मधुर भावनाओं और सुरीले नगमों के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम छायालोक में। और आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं प्यार भरे नगमे, जहां सुनेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे सदाबहार गीत जिनमें प्रेम के विभिन्न रंग समाये हुए हैं। इकरार का रंग, इंतजार का रंग, मिलन की खुशी और यादों की मिठास। तो तैयार हो जाइए प्यार के सुरों में डूबने के लिए। बिल्कुल अगले दो घंटे तक हम साथ मिलकर तय करेंगे उन गीतों का सफर जो वर्षों से प्रेम की भाषा बोलते आ रहे हैं और आज भी दिलों में उसी तरह बसते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत तो हमने की है इस प्यार की खुशबू से महकते पहले खूबसूरत नगमे के साथ। जी हाँ, आप ये गीत सुन रहे थे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जानम समझा करो से। और आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर कार्यक्रम छाया लोक में प्यार भरे नगमे सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, जहाँ हर गीत में धड़कता है प्यार और हर धुन सुनाती है दिल की बात,

वो हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब किसी की मुस्कान हमारी खुशी बन जाए और उसकी मौजूदगी हमारी सबसे बड़ी ताकत, तब ये दिल कह उठता है, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये गीत प्रेम की उसी गहराई, समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव को खूबसूरती से व्यक्त करता है। ये गीत बेहद लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाला नगमा है। यह गीत बताता है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि किसी को पूरे दिल से अपनाने, उसकी परवाह करने और उसे अपनी दुनिया का अहम हिस्सा मानने का नाम है। यही भावना इस गीत को श्रोताओं के दिलों के बेहद करीब ले आती है। इस गीत में प्रेम की वह भावना दिखाई देती है जहाँ किसी व्यक्ति के साथ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। गीत के शब्द बताते हैं कि प्यार केवल एक एहसास नहीं, बल्कि जीवन जीने का आधार बन जाता है। प्रेमी अपने प्रिय के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करता है।

और उसकी खुशियाँ यादों तथा मौजूदगी में ही अपनी दुनिया को देखता है। तो दोस्तों आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 7:18:42, यानी कि दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला चलने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम छह लोग के सेगमेंट प्यार भरे नगमे में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तो दोस्तों प्यार एक एहसास है जो बिना आवाज़ के भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी की मुस्कान में, तो कभी किसी की चिंता में, तो कभी किसी की खामोशी में भी प्यार साफ दिखाई देता है। कहते हैं कि प्यार को साबित करने के लिए बड़े बड़े वादों की ज़रूरत नहीं होती, और कभी कभी एक छोटा सा आप कैसे हैं ये बात भी दिल को सुकून दे जाता है। प्यार वो रिश्ता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। जब किसी की खुशी आपकी खुशी बन जाए, किसी का दुख आपको बेचैन करने लगे, और किसी की मौजूदगी से दुनिया थोड़ी और खूबसूरत लगने लगे, तो समझ लीजिए कि दिल ने प्यार की राह चुन ली है। प्यार केवल मिलने का नाम नहीं है, बल्कि इंतजार करने, समझने और विश्वास बनाए रखने का भी नाम है। दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चे रिश्ते दिलों को हमेशा जोड़े रखते हैं। और ज़िंदगी में हर इंसान कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जिसकी एक मुस्कान

मेरे दिन की थकान मिटा देती है। शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत ताकत है। और दोस्तों, प्यार का सबसे सुंदर रूप है वो है जिसमें अधिकार अधिकार कम और सम्मान ज्यादा हो, शिकायत कम और समझदारी ज्यादा हो, शब्द कम और एहसास ज्यादा हो। तो आइए इन प्यार भरे एहसासों के साथ सुनते हैं अगला मधुर नगमा, जो दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचाने का हुनर रखता है। क्योंकि प्यार जब सच्चा हो तो वो शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है।

तो दोस्तों आप ये गीत सुन रहे थे अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में फिल्म चमत्कार से, और इस गीत के बोल लिखे था अनबख्शीन और संगीत से पिरोया था अनु मलिक ने। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 7:54 और 53 सेकेंड, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि ठीक 8 बजे हम जाएंगे न्यूज ब्रेक के लिए, और 8:02 में हम फिर से हाजिर हो जाएंगे लेकर कार्यक्रम प्यार भरे नगमे सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों बस थोड़ी ही देर की बात है, और जाते जाते आप सभी के लिए एक प्यार भरा नगमा छोड़े जाती हूँ।

एक आवश्यक सूचना, हल्की से मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 2 जून 2026 को शाम 7:40 बजे से अगले 2-3 घंटों के दौरान कुछ बिहार और अलीपुर द्वार जिलों में कुछ हिस्सों में इसके प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आप जहां रहे सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम छायलो के सेगमेंट प्यार भरे नगमे में, और मैं हूँ आज आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। और दोस्तों, बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक रात के 9 बजे तक। तो यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम प्यार भरे नगमे में।

और उसकी मौजूदगी से दिन रोशन लगता है और उसकी यादों से रातें महक उठती हैं। फिल्म गैंगस्टर का ये बेहद लोकप्रिय गीत और इसी एहसास को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। यह गीत बताता है कि जब प्यार दिल की गहराइयों में उतर जाता है तो हर खुशी, हर ख्वाब और हर मंजिल उसी से जुड़ जाती है। यह गीत सच्चे प्रेम में होने वाली आत्मीयता, विश्वास और भावनात्मक निकटता को दर्शाता है। इसमें प्रेमी अपने प्रिय को अपनी दुनिया का सबसे अनमोल हिस्सा मानता है। यही गहरा समर्पण और अपनापन इस गीत को श्रोताओं के दिल के बेहद करीब ले आता है। ये एक ऐसा गीत है जो प्यार को जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास बनाकर प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये गीत प्रेम की उस गहरी भावना को व्यक्त करता है जहां प्रिय व्यक्ति ही जीवन का केंद्र बन जाता है। गीत में प्रेमी अपने साथी को अपनी रात, अपनी सुबह, अपना दिन और अपनी दुनिया बताता है। ये केवल आकर्षण ही नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और समर्पण की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, इसी एहसास के साथ अब अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

किसी का इंतजार करना, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, उसकी खुशी में मुस्कुराना और उसके दुख में साथ खड़े रहना, यही तो प्यार की सच्ची पहचान है। प्यार में खूबसूरत चीज़ विश्वास होता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते समय और दूरी की हर परीक्षा में मजबूत बने रहते हैं। कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं बल्कि एक नज़र, एक मुस्कान या एक छोटे से ख्याल से भी महसूस हो जाता है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, सच्चा प्यार हमें बेहतर इंसान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि अपने बारे में सोचने के साथ साथ किसी और की खुशियों की भी परवाह कैसे की जाए। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं सिर्फ एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। तो इन प्यारे एहसासों के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत, जो प्यार की इसी मिठास को सुरों में पिरोकर हमारे दिलों तक पहुंचाने वाला है।

दोस्तों आप एक गीत सुन रहे थे केके की आवाज में फिल्म वो लम्बे से। तो दोस्तों इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला 8:40 और 22 सेकंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाहलो के सेगमेंट में प्यार भरे नगमे। जी हाँ, और आज मैं हूँ आज सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है रात के 9 बजे तक। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम प्यार भरे नगमे में।

तो दोस्तों प्यार वो रोशनी है जो जीवन के हर मौसम को खूबसूरत बना देती है। दोस्तों प्यार के खूबसूरत एहसासों और मधुर गीतों से सजी आज की यह महफिल अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि छायालोक के सेगमेंट प्यार भरे नगमे के इस अंक में सुनाए गए गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा, आपकी यादों को ताज़ा किया होगा और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ज़रूर लाई होगी। क्योंकि प्यार एक ऐसा एहसास है जो जीवन के रंगों से भर देता है। कभी ये किसी की मुस्कान में दिखाई देता है, तो कभी किसी के इंतज़ार में, तो कभी किसी की छोटी सी परवाह में। प्यार की यही खूबसूरती है कि यह बिना किसी शोर के दिलों को जोड़ देता है और जीवन को एक नया अर्थ दे जाता है। आज हमने जिन गीतों को सुना उनमें कहीं मिलन की खुशी तो कहीं इंतजार की कसक, कहीं सपनों की मिठास और कहीं रिश्तों की गहराई। यही गीत हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन कितना अनमोल है। तो दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए और दिल में प्यार की यह रोशनी हमेशा जलाए रखिए। क्योंकि दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होता है किसी अपने का साथ और उसका विश्वास। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी छायालोक के एक नए और मजेदार अंक में, कुछ और सदाबहार गीतों, कुछ और खूबसूरत यादों और ढेर सारी दिलों की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने प्रियजनों के साथ प्यार बांटते रहिए। और हाँ, सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम, क्योंकि दोस्तों प्यार की खुशबू बनी रहे, गीतों की धुनें गूंजती रहे और आपकी जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहे। इसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। और दोस्तों जाते जाते एक मधुर तराना आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए 107 FM रेनबो पर।